और हां, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो खुदा की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहां तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको गनी ख्याल करता है, और तुम कयाफे से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद है और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़ कर और लिपट कर नहीं मांग सकते, और तुम जो माल खर्च करोगे कुछ शक नहीं कि खुदा उसको जानता है।

देखो ऐसी बात में तो तुमने झगड़ा किया ही था जिसका तुम्हें कुछ इल्म था भी, मगर ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुमको कुछ भी इल्म नहीं, और खुदा जानता है और तुम नहीं जानते।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन खुश आमदीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने वही की आमद का तज़किरा करते हुए फरमाया, अल्लाह की मखलूक में शायर और पागल से बढ़कर मेरे नज़दीक कोई काबिल नफ़रत न था। मैं शिद्दत नफ़रत से इनकी तरफ देखने की ताब न रखता था। अब जो वही आई तो मैंने अपने जी में कहा, यह नाकारा है, यानी खुद आप शायर या पागल हैं। मेरे बारे में कुरैश ऐसी बात कभी ना कह सकेंगे। मैं पहाड़ की चोटी पर जा रहा हूँ, वहाँ से अपने आप को नीचे लड़खड़ा दूंगा और अपना खात्मा कर लूँगा और हमेशा के लिए राहत पा जाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं यही सोच लेकर निकला। जब बीच पहाड़ पहुँचा तो आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप कहते हैं कि मैंने आसमान की तरफ अपना सर उठाया, देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक आदमी की शक्ल में उफक के अंदर पांव जमाए खड़े हैं और कह रहे हैं, ऐ मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्राइल हूँ। आप फरमाते हैं कि मैं वहीं ठहर कर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखने लगा और इस शुगल ने मुझे मेरे इरादे से गाफिल कर दिया और अब मैं ना आगे जा रहा था ना पीछे, अलबत्ता अपना चेहरा आसमान के उफक में घुमा रहा था और इसके जिस कोशे पर भी मेरी नज़र पड़ती थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी तरफ दिखाई देते थे। मैं मुसलसल खड़ा रहा, ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे, यहाँ तक कि खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरी तलाश में अपने कासिद भेजे और वो मक्का तक जाकर पलट आए, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम चले गए और मैं भी अपने अहले खाना की तरफ पलट आया और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुँच कर उनकी रान के पास उन्हीं पर टेक लगा कर बैठ गया। इन्होंने कहा, अबुल कासिम आप कहाँ थे? बाखुदा मैंने आपकी तलाश में आदमी भेजे और वो मक्का तक जाकर वापस आ गए। इसके जवाब में मैंने जो कुछ देखा था इन्हें बता दिया। इन्होंने कहा, चचा के बेटे आप खुश हो जाइए और आप साबित कदम रहिए। उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद वो वरका बिन नौफल के पास गई और इन्हें माजरा सुना दिया। इन्होंने कहा, कुद्दूस कुद्दूस, उस जात की कसम जिसके हाथ में वरका की जान है, इनके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। ये इस उम्मत के नबी हैं, इनसे कहो साबित कदम रहें। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वरका की बात बताई। फिर जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हिरा में अपना कयाम पूरा कर लिया और मक्का तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से वरका ने मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की जुबानी तफसीलात सुनकर कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। आपके पास वही नामूस अकबर आया है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। सामईन, यहां पर लेते हैं छोटा सा वक्फा। वक्फे के दौरान आप सुनेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: ایک نیا انداز
3: ایک نئی سوچ
2: एक नई पहचान
3: एक नई लगन
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1
2: जब मिलती है लगन
3: मेहनत
2: कामयाबी और खुलूस
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6
2: सुनते रहिए

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीटी की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 यूसीटी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने खास मेहमान सर कामरान बट से बहुत मजे की गुफ्तगू कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने लिटरेचर साइंसेज से आर्ट्स में शिफ्ट होकर लिटरेचर पढ़ा हुआ था और फिर सोशियोलॉजी, और इन सब की हेल्प से उन्होंने फिल्म मेकिंग को एक नए एंगल से देखना स्टार्ट किया और सोशल इशूज को हाईलाइट किया। सर, मैं इसी से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो अब हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे हमारी अब नई डिग्री एक स्टार्ट हुई है फिल्म टीवी एंड डिजिटल एज, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं जब स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है कि उनको लिटरेचर की नो हाउ हो, उनको सोशल इश्यूज का आइडिया हो, उन्होंने सोशियोलॉजी को अच्छे से देखा हो? क्या इसके बगैर भी फिल्म मेकिंग की जा सकती है, या इसकी ग्रिप के साथ अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे एज अ एक पूरे प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को लेके आते हैं?
2: देखिए, इफ वी टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, तो इसमें जितने फिलोसोफर्स और जितने फिल्म मेकर्स के हवाले से अगर हम देखें, तो उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना है कि इट्स अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। आप रियलिटी में जो कुछ देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। वो ठीक है, कुछ आप बियॉन्ड रियलिटी और फैंटेसी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पोर्शन बहुत कम है। ज़्यादातर फिल्म मेकिंग इज़ अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। तो इफ़ इट इज़ अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी, तो वो रियलिटी को पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली या बहुत छोटे से सर्कल में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। लिहाजा सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद ये है कि हम बहुत ऑब्जर्व करते हुए भी बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप एक स्टोरी पढ़ लें, तो आप उस स्टोरी में ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि आपको इंस्पायर भी करेगा और आपको फिर फर्दर सोचने पे मजबूर भी करेगा। तो लिटरेचर करता क्या है? लिटरेचर, अब जितने भी फिल्म स्कूल्स हैं इंटरनेशनल या जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे लिटरेचर बेस जो है वो लिटरेचर से ही बनाई जाती है। अब देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या, हुआ ये कि टेक्निक बहुत स्ट्रांग हो गई, हमारे पास बहुत स्ट्रांग कैमराज आ गए, एडिटिंग आ गई, कलर ग्रेडिंग की बहुत टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे साउंड को रिकॉर्ड करना और साउंड को प्रोड्यूस करना आ गया। लेकिन जो स्टोरी है वो वहीं की वहीं खड़ी है, कि स्टोरी क्योंकि उस तरह से सिखाई नहीं जा सकती, वो आपके अंदर से आपकी ऑब्जर्वेशन से, वो ठीक है लिखने का क्राफ्ट आपको भी सिखा देगा। हाँ, आप एक्सपोज हो बहुत सी स्टोरी से तो आपका क्राफ्ट बेहतर होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बेस खड़ी है कंटेंट की या कहानी की, वो आपको लिटरेचर से मिलनी है। मसलन अगर आप देख लें इंटरनेशनल जितने, अब क्रिस्टोफर नॉलन को देख लें, मॉडर्न फिल्म मेकर है, या हम अल्फ्रेड हिचकॉक को देख लें, वो 60s में उसके साइको इज अ वेरी फेमस फिल्म ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक। तो ये सारे वो लोग थे जो ऑटियस थे। ऑटियस वो लोग हैं जो अपना स्क्रिप्ट भी खुद देख, कहानी का सिलेक्शन, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना पूरा इन्वॉल्व होना, और यानी उसका प्रोसेस में खुद से इन्वॉल्व होते हैं, किस नॉवल पे फिल्म करनी है और क्यों करनी है, कौन सी कहानी ऐसी है अगर उन्हें लिटरेचर से उठाना है तो उस पर फिल्म बन सकती है, कौन सी ऐसी कहानी है जिसको उन्होंने चेंज करना है, बेसिक आइडिया वही लेना है फिर उसको चेंज करना है। सो लिटरेचर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। मतलब मुझे, आप सब कॉन्टिनेंट में नाम लें तो सत्यजीत रे का नाम आता है। अब सत्यजीत रे वो हैं जो खुद शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, उनकी एक फिल्म हमेशा से मैं रिकमेंड भी करता हूँ, शॉर्ट फिल्म है अनुकुल। अनुकुल रोबोट्स पे है कि किस तरह से रोबोट, और वो उन्होंने 70s में लिखी थी और अब उसको डायरेक्ट किया है कुछ नए यानी फिल्म मेकर्स ने। तो एक राइटर आने वाले दौर के लिए भी उस तरह से उसको लिख रहा होता है, और बड़ा राइटर होता भी वही है कि जिसकी कहानी कभी भी टाइम बाउंडेड नहीं होती। मंटो को आप देख लें, मंटो ने कब कहानियां लिखी वो आज की सोसाइटी पे भी। तो बड़ा राइटर ऐसा एक राइटर होता है जिसका कभी भी जो लाइन है मरती नहीं है, उसको हम इस तरह से बोला करते थे। सो लिटरेचर इसलिए आपको सोचने पर मजबूर करता है, बहुत से किरदारों से मिलवाता है, खुद किस तरह से कहानी ने चलना है और किस तरह से आपने अपने व्यूअर को हुक करना है, क्योंकि हुक करना व्यूअर को काम है आपका, वो चाहे आप स्क्रीन पे कर रहे हैं चाहे आप स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले अगर कहानी बहुत स्ट्रांग होगी तभी उसमें पॉसिबल है कि वो आप फिर हुक कर सकेंगे। तो इसलिए लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को, हम लोगों ने भी जो डिग्री भी स्टार्ट की उसमें शॉर्ट स्टोरी की एक पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए कि पहले कहानी पढ़ें देखें और फिर स्क्रिप्ट की तरफ जाएं। स्क्रिप्ट राइटिंग है वो टेक्निक है, वो आपको सॉफ्टवेयर भी हेल्प कर रहे होते हैं, फेड इन भी आप कर सकते हैं, साउंड ट्रैक भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपको खुद सोचना है। चैट जीपीटी को आप देते हैं, वो आपको आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन वो ऐसे आइडियाज होते हैं जो फिर वो बहुत सौ को दे रहा होता है। तो इसलिए मसला ये है कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो आप सोसाइटी से एक्सप्लोर करें, उसमें जाके ऑब्जर्व करें, कैरेक्टर रीड करें, एक कैरेक्टर को रीड करें और फिर देखें कि इस ये कहाँ से आया है और इसने कहाँ जाना है, वहीं से कहानी बनना शुरू हो जाएगी।
1: सर जैसे अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे तो इसी से आगे सवाल को मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई टूल्स जो हैं इनकी वजह से फिल्म मेकिंग में बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं इनसे। मैं देखती हूँ कि हमारे पास भी जो प्रोजेक्ट्स बच्चे लेकर आते हैं वो नॉर्मली जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहे होते हैं। सो आपको नहीं लगता कि एज ए फिल्म मेकर और एज ए टीचर ये बहुत चैलेंजिंग हो गया उनको जज करना या उनको बताना कि चैट जीपीटी के अलावा या डिफरेंट एआई टूल्स के अलावा वो किस तरह सोच सकते हैं और अपनी सोच के प्रोसेस में सोशल इश्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं?
2: अच्छा मैम, एक तो ये है कि वो कैसे पता करना कि वो यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम खुद अगर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेंगे टीचर्स तो हमें पता तो चल जाता है, जैसे आपको पता चल गया बिकॉज यू आर कनेक्टेड, सिंस आई एम ऑल्सो यूजिंग द टूल्स तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है और कैसे नहीं है। और ये टेक्नोलॉजीज ये आती रहेंगी, जब कैलकुलेटर आया था तो तब भी बड़ी लोगों ने बहस की थी कि कैलकुलेटर जो है हमारी बेसिक कैलकुलेशन को ख़त्म कर देगा और हम हर वक्त कहीं पे भी जाएंगे तो साथ कैलकुलेटर लेके जाएंगे कि अगर 2+5 है तो कितने बने, तो वो नई टेक्नोलॉजी पे ये बहस होती है। ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है। अब मसला ये है कि आप प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी आपको आंसर कर देता है, अब अगर उसे आप पढ़ ही नहीं रहे और कॉपी पेस्ट करके टीचर को आपने सबमिट करवा दिया तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। आप हेल्प लें, आप डिपेंड ना हो जाएं पूरे के पूरे, आप कहानी का आइडिया लें, ठीक है, लेकिन वो आइडिया कितना आपकी सोसाइटी पे कनेक्टेड है और कितना आप खुद इंस्पायर हो रहे हैं उससे और कितने उसमें विजुअल एलिमेंट हैं, ये कुछ डिसीजंस अभी भी ह्यूमन के हाथ में रहेंगे। और फिर ये है कि वो आपको लाइट के प्लान्स भी बना, फ्लोर प्लान बना के देता है चैट जीपीटी, लेकिन उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो 100% उस तरह से नहीं हो रहा होता। सेम इज़ द केस, उसमें कहानी के हवाले से भी लिमिटेशन होती है। मेरा मतलब है कि वो कल्चरल जो लिमिट्स हैं वो समटाइम्स उसको समझ नहीं आते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ही आप इंडियन फिल्म में देखें तो वो सारे पाकिस्तानी अगर उन्होंने दिखाना है तो अस्सलामुअलैकुम कह रहे होते हैं,
1: हाँ जी,
2: ठीक है, उसके बाद वो शेरवानियां पहन के जा रहे होते हैं, ईद दिखाते हैं तो झंडियां लगी होती हैं। अब ये एरर चैट जीपीटी भी करता है इस किस्म के, तो आपको इन एरर्स को फिल्म मेकिंग में कंट्रोल करके रखना है। हाँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरा मतलब है अगर आप फोटोशॉप में एआई को यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल आप लिख देते हैं कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए और वो कर देता है, लेकिन आपने कौन सा बैकग्राउंड करवाना है वो अगेन आपका जो ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी ट्रेनिंग, आपकी अपनी लर्निंग उस पे आएगा। तो हेल्प जरूर है, बहुत अच्छी हेल्प है, होनी चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग की दफा आपको क्रिटिकली उसको देखना है।
1: और सर जैसे आपने अपने करियर का आगाज किया उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और आपके बच्चों के पास हर तरह से एडवांसमेंट भी है, तो क्या आपको एक डिफरेंस नजर आता है? आपने लिटरेचर भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा और अब के बच्चे जो होते हैं उनको बस होता है कि ये बस एक आइडिया और इसको हमने एक शक्ल देनी है और ये बेस्ट होगा, तो आप उन बच्चों को किस तरह से एडवाइस करेंगे कि वो फिल्म मेकिंग में आते हैं और स्पेसिफिकली ये स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो अपने आप को किस तरह से फुली तौर पे प्रिपेयर करें कि हाँ ये चीज़ ऐसे और हमने इसको यहाँ से लेके चलना है और इसी तरह से स्टार्ट करना है?
2: देखिए, आर्ट फॉर्म है ना फिल्म भी, और उसमें आर्ट फॉर्म क्या होती है जिसमें आपका अपना एक्सप्रेशन नज़र आता है, तो एक तो ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये बात कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो एडिटिंग सिस्टम इतने स्लो थे, मेरे यहाँ हम लोग एक इफेक्ट लगाते थे, एक डिजॉल्व लगाते थे, फिर वेट करते थे कि डिजॉल्व जो है वो लग जाए, तो टाइम जो है उस हवाले से बहुत ज़्यादा एफिशेंट हो गए अब और क्वालिटी वाइज भी हो गए। हम जो है वो टेप्स वाले कैमरा से करियर स्टार्ट किया, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई डिजिटल में, कार्ड्स आना शुरू हुए, तो वो टाइम वाइज मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छा मैनेज हो सकता है। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ है कि बच्चे किस तरह से उसको यानी बहुत जल्दी करते हैं, इसमें हमेशा से आप कुछ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन करें मरियम अपने आप से, अपने बारे में क्रिटिकल हों, यही मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ रखें। जितने ज़्यादा मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट्स जब लाते हैं अपना कोई भी आइडिया लाते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चंस किया जाता हूँ कि यार इस बारे में सोचा, ये करेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ये करेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इस करेक्टर के पास ये करने के लिए था तो उसने क्यों नहीं किया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन सीड्स आपने अपनी कहानी में कहीं ऐसे डाले हुए हैं जो आगे जाके पौधे और ट्री बन रहे हैं, रीजंस बन रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो उस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन करना है अपने आप से और अपने बारे में क्रिटिकल होना है। जितने ज़्यादा आप क्रिटिकली अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे, जितना खुद से क्वेश्चन करेंगे, उतना ही ज़्यादा फिर उसमें चीज़ें इम्प्रूव हो रही होंगी।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फैकेलिटी, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकेलिटी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन।

0: होगा, तो उसमें आप कैसे जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि प्लेजराइज्ड है या ये एक डिफरेंट तरह से चीजों को बताया जा रहा है जो कि अभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा।
1: अच्छा मरियम, आई स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज इन 2006, तो 2006 से 2025 तक इतना काम देखा भी है और करवाया भी है कि वो ना पता चल जाता है कि अगर इस तरह से। और देखें, इंस्पिरेशन होना और प्लेजरिज्म होना इज डिफरेंट। मेरा मतलब है कि बेनज़ीर भुट्टो से क्वेश्चन किया गया, रऊफ साहब ने क्वेश्चन किया कि भुट्टो साहब ने कहा था उधर तुम इधर हम, और इस पे जो है वो मुल्क टूट गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ये एक सहाफ़ी ने लिखा था और इस तरह से हुआ। उसके बाद यही क्वेश्चन इफ्तिखार साहब ने किया जवाब दे, एक प्रोग्राम था उसमें सेम आंसर है, तो ये प्लेजरिज्म तो नहीं है। ठीक हो गया, तो प्लेजरिज्म क्या है जरा इसको भी देखना पड़ेगा, और फिल्म में क्या है उसको भी देखना पड़ेगा। आप इंस्पिरेशंस लेते हैं, आप इंस्पिरेशंस लेके चीजें कर रहे होते हैं, और प्लेजरिज्म मेरा मतलब या तो आप डिटो कॉपी कर दें, आप देखें फ्रेम्स देखें और उसको उसी तरह से कर दें, या आप पकड़ के कहानी, अब मंटो की कहानियों पे कितने लोगों ने, मतलब सौगंधी पे बहुत सी फिल्म्स बनी है, खोल दो पे बहुत सी फिल्म्स बनी है, काली शलवार पे बहुत सी फिल्म्स बनी है। अब वो हर फिल्म की कहानी तो सेम है, ठीक हो गया, हर फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम भी सेम है, ठीक है, वो एक बाप है जो जैनब उसकी बेटी है और उसको ढूंढ रहा था, बात है तो ठीक है, वही है सारी की सारी जो मंटो के अफसाने हैं, लेकिन हर एक ने अपनी डिफरेंट फिल्म बनाई है। तो अगर आपका डायरेक्टर कोई एक स्टोरी ले रहा है, चाहे वो बनी हुई है पहले, और उसको अपने अंदाज से पेश कर रहा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है, एक चीज। दूसरा, डॉक्यूमेंट्री में अगर कोई किरदार है जो बहुत, मेरा मतलब है कि इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक कसूर में एक सर्कस लगती है और उसके मौत के कुएं में एक लड़की जो है वो बाइक चलाती है क्योंकि उसके वालिद की डेथ हो गई है, वो चलाया करते थे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, वो मौत के कुएं, अब ये कैरेक्टर अगर मैंने किया है और मैंने अपने अंदाज से किया है और आपको भी वो इंस्पायर कर रहा है कैरेक्टर, आप भी करना चाहती हैं, तो आप जरूर करें। या तो उस कैरेक्टर को मैंने ओन कर लिया हो ना, यानी ये कहोगे ये मेरा कैरेक्टर है और ये किसी और से बात नहीं करेगा, मैंने उसके कॉपीराइट्स ले लिया हूँ, अदरवाइज कहानियां सुनाने के अंदाज डिफरेंट है,
0: यानी नरेशन डिफरेंट तरह से।
1: जी जी जी बिल्कुल, मैं अगर आपका फुटेज ले लूं ना, मैंने आपने जो शूट किया था वो ले लूं और उसको एडिट करना शुरू कर दूं, तो वो प्लेजरिज्म होगा। कैरेक्टर्स फैले हुए हैं उस पर, बहुत से लोग कर सकते हैं और करने भी चाहिए। मैं मतलब है कि ईदी साहब हो गए या कायदा साहब है, माय टू मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटीज ऑफ पाकिस्तान, तो वो अगर उस पे उन पे काम हो रहा है तो बहुत से लोग कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। हाँ, ये ना करूं कि मैं आपकी फिल्म में अपना नाम लिख के दे दूं, वो गलत है। अदरवाइज इंस्पिरेशन लेके काम करना वो प्लेजरिज्म उस तरह से नहीं।
0: ऐसा ही है। और सर, जो हमारी स्पेशलाइजेशन है फिल्म टीवी एंड डिजिटल मीडिया, जब बच्चे स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं तो इसमें क्या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत डिफरेंट हैं?
1: इसमें हमने किया क्या, हमने उसी तरह से बेस पहले लिटरेचर से बनाई, शॉर्ट फिल्म शॉर्ट स्टोरी से बनाई, और फिर हम उस पर बिल्ड करते गए उसमें, फिर मॉडर्न जो टेक्निक है। अब तो मरियम ये है कि सब कुछ जो है वो डिजिटली, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जा रहा है, वो प्रोड्यूस भी डिजिटल टेक्निक के थ्रू हो रहा है, और जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी, मैं OTT प्लेटफॉर्म है। अब ये फिल्म ये नहीं है कि मैंने बनाई और मैं जाके किसी भी चैनल को दूँ कि प्लीज़ मेरी फिल्म खरीद लें, अब तो ये है कि आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर देते हैं और खुद डायरेक्टली अपने व्यूअर के साथ कनेक्टेड होते हैं। इस एनवायरनमेंट में फिर स्टूडेंट को इसी तरह से इक्विप करना है जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है यहाँ पे, जिसमें जितने भी रिक्वायर्ड हमारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आपका एडोबी प्रीमियर हो गया, आपका फोटोशॉप हो गई, आफ्टर इफेक्ट हो गया, माया हो गया, 3D Max हो गया, ये सारे के सारे जो है सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी लैब पूरी कर रही होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टूडियो है अपना, मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स को विजिट किया, मैंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को विजिट किया है, जिस तरह से UCP में ख्याल रखा जाता है स्टूडेंट्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा कहीं पर उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह से टीचर्स पे भी प्रेशर्स होते हैं कि हमने किस तरह से अपना भी 100% देना है और स्टूडेंट से भी उसका 100% आउट करना, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, हमें भी मज़ा आता है, वी इन्जॉय सच एनवायरमेंट। तो वो चीज़ UCP में इसको एज देती है, इसका जो स्टूडियो है वो, जहाँ पे आप शो प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो ऑन एयर हो सकता है आपके किसी भी चैनल पे, बच्चे उस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट उनकी हो रही होती है। फिर ये सारा का सारा बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इन सारी एक्टिविटीज में, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसलिए हमारी जो फिल्म की डिग्री या डिजिटल की डिग्री है वो बाकी सारी जगहों से डिफरेंट है। और फिर ये है कि जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे स्टूडेंट को मिल रहा होता है वो ये है कि वी थ्रो देम इन डीप हॉट वाटर्स, ठीक है, सामने कैमरे के बिठा देंगे उन्हें और उन्हें वहां से उनका फिर आउटपुट 100% कोशिश करेंगे वो निकाल।

0: तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है और कॉन्फिडेंस ही है जो देना है। दूसरा, हम क्वेश्चन का कल्चर यहाँ पे बहुत ज्यादा हमने रखा हुआ है कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन करें हमसे, क्योंकि क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। जब आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, जो आपको नया इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसके वहां से उस हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो आप लर्न करते जाएंगे।
1: ऐसा ही है। आज की जो फैकल्टी आर था उसमें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला, मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला जो इससे पहले नहीं पता था।
0: सो नाइस ऑफ यू मैम, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: एक्चुअली मैं फैकल्टी आर का मकसद ये है कि हम बैठें और डिस्कशन करें रिगार्डिंग द फैकल्टी, हमारी अचीवमेंट्स, हमारी अपॉर्चुनिटीज जो हम स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ट्रेंड्स के बारे में, और उनको गाइडलाइंस दें एज अ मेंटोर जितना हम दे सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोग्राम के जरिए मैंने और मेरे सामईन ने बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया सर कामरान आपका आने का, और इसी तरह गुफ्तगू का सिलसिला अगले हफ्ते फिर आपके साथ जारी रहेगा और आपके साथ दोबारा कनेक्ट करेंगे। आप सुन रहे थे प्रोग्राम फैकल्टी आर, मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चरर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, FM 92.6 से।

0: Admissions open for fall 2026. Explore the diverse degree programs offered by Faculty of Media and Mass Communication at University of Central Punjab. We are offering BS Media and Communication Studies, BFA Visual Communication Design, BFA Visual Art. Contact us at 080-000-827 or apply on admissions@ucb.edu.pk. Faculty of Media and Mass Communication, University of Central Punjab.
1: अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 0423111877 पर राब्ता कीजिए।
2: Are you tired of feeling

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
2: एंड नाउ You are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
3: Bhook chehre pe liye chaand se pyare bacche bechte phirte hain galiyon mein ghubare bacche. Ho gaya charkh sitamgar ka kaleja thanda, mar gaye pyaas se darya ke kinare bacche. बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं। इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं। इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है। इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं। इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है। ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं। बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं, लेकिन बाज औकात हालात, रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है।
4: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं। हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता, इसलिए किराया कम किराया दे नहीं सकते। इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं। हमारी मम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ इधर काम कर लो, अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम घर की आमदनी चला लेते हैं। जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे, जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पी जाते हैं। जो भी होते हम फिर भी छोड़ देते हैं, हम कहते अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें। कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते, कोई देता नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते, कोई देते नहीं, इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सर्कट चल जाता है।
3: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं। जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है। दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं। जिंदगी, वक्त, हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता। जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता।
5: मेरे अब्बू फोत हो गया, मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 1-5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ। इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं, जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ। मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं। इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है।
3: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं। हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो जहनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते। लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम, बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है।
6: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई। अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे। मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है। तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया। अब छुट्टियाँ हुई हैं, मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ। सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल से पढ़ने के बाद आता था, अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ। आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया। उस्ताद जी कहते हैं कि मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ।
3: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्ने सलूक करे, इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले, मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
7: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
3: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफरात-ए-ज़र भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
8: दादा, वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर अफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
3: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
9: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is 92.6.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।
4: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ मैं हूं आपका होस्ट समरेज गुल। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज अ लीडर, शी इज एन एजुकेशनिस्ट एंड शी हैज बीन एन एक्स जज। राइट नाउ शी इज सर्विंग एज द डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हादिया वान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
5: वालेकुम सलाम।
4: मैम बहुत शुक्रिया कि आप शो पे तशरीफ लाएं। मैम आप डीन हैं लॉ डिपार्टमेंट की, तो मैम आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि लॉ यूसीपी में अगर एक स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, और स्पेसिफिकली लॉ डिपार्टमेंट यूसीपी का कैसे बाकी डिपार्टमेंट से स्टैंड आउट करता है?
5: अच्छा, ये तो आपने मेरे से एक बड़ा ही अजम्पटिव सा क्वेश्चन कर दिया है कि ये स्टैंड आउट करता है कंपेयरिंग विद रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। आई कैन नॉट कंपेयर दिस डिपार्टमेंट विद रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ यूसीपी, बट आई कैन सेफली कंपेयर दिस डिपार्टमेंट एंड स्पेशली द लॉ प्रोग्राम वी आर ऑफरिंग एट यूसीपी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स बीन ऑफर्ड बाय अदर इंस्टीट्यूशंस। सो कंपेरेबल, यू कैन कंपेयर बिटवीन द कंपेरेबल्स। So I can compare this program with what programs are being offered in the market. The first and the prime most is, as you have rightly pointed out in my introduction also, that I have been a judge also. And while I was, although that was a very small tenure for me, but that was a big learning experience for me, because when I served as a judge, I encountered lawyers and judges and all these stakeholders in the justice system. And I realized that how experiential learning is required at law schools and law colleges. So that was my learning, and that was the point over which we built our law program here. Not only here, but previously I was principal law college, Punjab Law College. We started that trend at law college, and then we brought that trend in UCP also, that the whole program is more or less experiential. And when I say experiential, that means this is learning by doing. So in fact, you learn law by doing law. And when I say by doing law, that means the students, they are required to not only learn or rote learn the law, but actually do it with your own hand, in different ways. Like, for instance, as a moot, or sometimes as a mock. The trial could be mock trial, could be mini trial, it could be a full whole length trial or something like that. And sometimes various types of surveys, various types of activities, which in fact gave the insight of law to the students. So basically law program at UCP standouts as far as its pedagogy is concerned, and especially the methodology is concerned. So we go very particular about the methodology, because that is, from my experience, I learned that that is the thing we require to work on, the methodology thing. So we worked on that thing a lot. And that is the reason probably that our students, most of them, majority of the students, they are willing to go into the market to exercise advocacy. They are not very much for the cozy environments of the law offices, but they are willing to appear before the court, actual performance, and that is due to the training.
4: मैम जैसे आपने अभी जिक्र किया मूड और मॉक ट्रायल्स के बारे में, मैम आप जरा एक्सप्लेन कर सकती हैं कि मूड और मॉक ट्रायल होते क्या हैं, और इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, और जो हमारे स्टूडेंट्स फ्यूचर में लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी?
5: ओके बेटे, جو موٹ ہے, موٹ حالانکہ اب موٹ کو بہت زیادہ کنیکٹ کیا جاتا ہے ود لا, آلدو موٹ از ناٹ ریئلی ویری مچ آئی مین دا اوریجنل آئیڈیا آف لا, دیٹ کوڈ بی ان میس کمیونیکیشن, دیٹ کوڈ بی ان پولیٹیکل سائنس, دیٹ کوڈ بی ان اینی ایریا آف لرننگ, بیکاز موٹ از بیسکلی ویئر یو ہیو ون پوائنٹ اینڈ دیر آر ٹو پارٹیز اینڈ آرگیومنٹس آر بینگ کریئٹڈ فار اینڈ اگینسٹ اوور دیٹ ویری پوائنٹ. سو ان آل ڈسپلنس یو کین ہیو موٹ, رائٹ؟
4: اوکے,
5: بٹ ایز فار ایز ماک ٹرائل از کنسرنڈ, let me explain the moot in law then. The generic use of moot is, as I told you before, that this is a generic word which is used to debate a point. When we talk about moot in law, that means that it is in our advocacy that when we go in the appellate forums, then only few law points they are there to contest in the appellate stage, like for instance in appeals or in writs or over there, because only one or two law points are involved. So the appellate advocacy, that revolves around the moot thing. Whereas the mock trial is basically that trial which is played as a mock. And when I say trial, that means at the subordinate judiciary level, I mean at the trial level, where the suit or case is started. For example, when we file an FIR in criminal law, or when we file a plaint in a civil suit, that starts from there. And then the whole process of having that trial between plaintiff and defendant, or prosecution and defense, that is trial. And that when that is played mock, that is called mock trial.
4: All right. Listeners, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. بریک کے بعد ہم میم سے دوبارہ سوال جواب کا سلسلہ سٹارٹ کریں گے. سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं. मैम, हमें ये भी पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब स्पेसिफिकली इंडस्ट्री लिंकेज भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, तो आप थोड़ा सा बता सकती हैं मैम, अभी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए जो यूसीपी में हैं उनके लिए क्या इंडस्ट्री लिंकेजेस प्रोवाइड की जा रही है? क्योंकि अक्सर ये होता है, हमने लॉ में सुना है कि लॉ में बहुत डिपेंड करता है कि आप जिनके बार में जा रहे हैं और आपके उस वक्त जब आप एडवोकेसी में चले गए आपके सीनियर कौन है. तो मैम, इस हवाले से भी कोई यूसीपी इसमें
2: पार्ट प्ले करता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है कि आपने मेरे से ये सवाल किया है. हम यहाँ पर फैकल्टी खुद और यूनिवर्सिटी दे आर प्लेइंग हैंड्स इन हैंड, इसलिए कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वी हैव करियर ऑफिस, CSO इज अ प्रॉपर ऑफिस, एंड इन ईच फैकल्टी देर इज फाइलो विच इज फैकल्टी इंडस्ट्री लिंकेजेस ऑफिसर दैट इज प्रोवाइडेड इन द फैकल्टी लेवल. एट फैकल्टी लेवल व्हेन वी गो फॉर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस इन स्पेशली फैकल्टी ऑफ लॉ, we create these linkages with law offices for many different things. First and the foremost is the internship of the students, because we are required to give them internship training of 3 credit hours after their fourth year in the summer. So in order to give them a real law office experience, we create MOUs with various law firms, law offices, which provide them diverse type of practical learning at law offices. So that is the first point where our linkages play a role. Secondly, for the employment of the students, with the help of CSO and again with the help of ILO, we create placements for the students. Many a times students ne jahan par apni internship ki hoti hai, मैनी अ टाइम्स वही ऑफिस उनको प्लेसमेंट के लिए इन्वाइट कर लेते हैं, और अगर वो नहीं होता तो फिर देन वी सी इन द मार्केट के हाउ मैनी एम्प्लॉयर्स आर देयर, एंड एक लिंकेजेस का वो भी लेवल है. द थर्ड लेवल ऑफ लिंकेजेस इज वेयर वी कॉल डिफरेंट प्रोफेशनल्स फॉर हैविंग अ चिट चैट विद द स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली द आउट गोइंग स्टूडेंट्स हु आर फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर स्टूडेंट, क्योंकि वो बिल्कुल रेडी मार्केट रेडी होते हैं. तो उस वक्त सो दे मे बी सेंसिटाइज्ड अबाउट द रियल पिक्चर ऑफ द इंडस्ट्री. ऑल्दो कि हमारा, जैसे मैंने पहले आपको बताया ना, इट्स ऑल एक्सपीरियंशियल, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंडस्ट्री कोई नई चीज़ नहीं होती व्हेन दे गो आफ्टर देयर ग्रेजुएशन, बिकॉज दे कीप गोइंग ऑन इन द लॉ ऑफिसेज एंड इन द कोर्ट्स ड्यूरिंग देयर 5 ईयर्स प्रोग्राम. सो एक लिंकेजेस का ये भी है कि जहाँ पर हम उनकी प्लेसमेंट सिक्योर करते हैं. एक लिंकेजेस जो है जिस लेवल पे हम करते हैं, हम अपनी फैकल्टी में वी गिव वेरी वेरी सब्सटेंशियल टाइम फॉर क्रिएटिंग द कल्चर ऑफ लॉफुलनेस इन आर सोसाइटी, स्पेशली एट यूसीपी एंड ओवरऑल. उसके लिए हम बहुत सारी डिफरेंट एफर्ट्स करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना लेजिस्लेटिव थिएटर करते हैं, हम मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं, हम लॉ क्लिनिक करते हैं, हम क्लिनिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, हम मीडिएशन करते हैं, वगैरह वगैरह. तो उनके लिए भी हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है. एक ये भी लेवल होता है कि जहाँ पर हम प्रोफेशनल्स के साथ या इंडस्ट्री के साथ अपने लिंकेजेस बनाते हैं. काफ़ी कम, लेकिन ये भी होता है कि समटाइम्स कोई हमने ग्रांट के लिए कोई प्रपोजल राइटिंग करनी है, तो इवन फॉर दैट वी नीड सम इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, हम उसको भी वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं. फिर ये है कि गेस्ट स्पीकर्स जो आते हैं, हमारे जो मॉक ट्रायल्स और जो मूट्स होते हैं उसमें, इन ऑर्डर टू जज देम, हम जो जजेस बुलाते हैं वहाँ पर एक और लेवल के ऊपर हम अपने लिंकेजेस को मटीरियलाइज कर रहे होते हैं. स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हमारा जो LLM प्रोग्राम है, उनमें इवन उनकी जो असेसमेंट होती है, जो कि उनकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी हम एक्सटर्नल जो जजेस हैं उनको इनवाइट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा काम एक्सपीरियंशियल है, और जब LLM के स्टूडेंट्स अपनी जो भी उनकी असाइनमेंट होती है वो प्रिपेयर करते हैं, देन दैट इज़ नॉट ओनली assessed by their internal जो teachers होते हैं, लेकिन वो کیونکہ وہ پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں, یعنی اس میں بھی وہ موڈس کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے, تو پھر ہم ایکسٹرنل جو ججز ہیں ان کو بلواتے ہیں. سو ان دیز وے, اور اس میں سے کچھ میں شاید بھول بھی گئی ہوں گی, اس طرح بہت ڈائیورس ویز ہیں جس میں ہم لنکیجز کریٹ کرتے ہیں اور ان لنکیجز کو مٹیریلائز کرتے ہیں.
1: اوکے میم, جیسے آپ نے بھی بات کی تھی کہ آپ لیجسلیٹو بھی کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے کافی شاکنگ سی بات تھی کہ ہمارا خود تھیٹر تھا اس دفعہ فائنلز میں, تو لاء کے اسٹوڈنٹس آئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارا اینول ایک تھیٹر ہوتا ہے, تو ہم نے وہ دیکھا بھی, ہم نے اپنی تھیٹر کے ٹیچرس کے ساتھ وہ دیکھا, اینڈ اٹ واز اے فینومینل تھیٹر. تو میم یہ تھیٹر کا آئیڈیا بیسکلی کہاں سے آیا لاء میں کہ لیجسلیٹو تھیٹر بھی کیا جائے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کو ایکسپلین ہم بیٹر وے میں کر سکتے ہیں اباؤٹ لاء, یا یہ ویسے اس کا؟
2: جی میں بتاتی ہوں. یہ بیٹے آپ نے بہت ہی اچھا ریز کیا, کیونکہ اس میں مجھے موقع مل جائے گا کہ میں آپ کو, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم اپنے ٹائم میں سے کافی اچھا چنک ٹائم کا نکالتے ہیں لاء اویئرنیس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اپنی پرسنل آبزرویشن بھی ہے اور سب کی آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے کالجز میں, اسکولس میں جو لیگل ایجوکیشن ہے, یہ کسی بھی لیول پہ ایز سبجیکٹ یا ایز کریکولم یا ایز پریکٹس بھی بہت کم ہے کہ کسی کو پتا ہو کہ لاء کیا ہے. اینڈ اسپیشلی جب سے ہمارا لاء پروگرام بھی اب بار کاؤنسل نے اس کی جو انٹیک ہے وہ تھوڑی کر دی ہے, تو اب صرف وہی لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں ان پریکٹسنگ لاء, دے کم فار لیگل ایجوکیشن. سو ان آرڈر ٹو ڈسمینیٹ دس لیگل انفارمیشن ان سوسائٹی, ان کمیونٹی, وی ہیو اسٹارٹڈ مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف اویئرنیس کیمپینس, اینڈ لیجسلیٹو تھیئیٹر از ون آف دیم. دا آئیڈیا آف لیجسلیٹو تھیئیٹر از ناٹ, آئی کین ناٹ سے دس از مائنڈ, بٹ آئی ہیو کسٹمائز دس آئیڈیا بیکاز اٹ کمز فرام the tradition of street theaters and from Brazilian theaters I have borrowed the idea and then we customize this as a theater and this is annually played by our own students. This is written, directed, everything is done by our own students. Aur jo iska idea hai wo ye hai ke wo areas jahan par ke legislation required hai aur wo hai nahi یا وہ کافی نہیں, تو وی پلے دیٹ تھنگ ان اے فارم آف تھیئیٹر. دین آفٹر دیٹ ایک پینل آف ایکسپرٹس ہم کال کرتے ہیں جو کہ ڈائیورس ایریاز آف جو سوسائٹی, ان سے انوائٹ کیا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل دیل کم فرام دا لیجسلیشن, دیل کم فرام جوڈیشری, فرام اکیڈیمکس, فرام دا ایکسپرٹس اور لیگل, ڈفرنٹ پارٹ, تاکہ وہ ساری ریپرزینٹ انکلوسیوٹی ہو جائے. وہاں پہ بیٹھ کے دین دے ڈسکس اباؤٹ دا تھنگ دے پلیڈ اور دے سا پلینگ ایٹ تھیئٹر, اینڈ دین دے ڈسکس اباؤٹ دا اویلیبل لاز, اور اس میں پھر وہ پروپوزلس بناتے ہیں کہ کس طرح کا لاء آنا چاہیے.
1: اور پھر میم یہ صرف تھیئٹر نہیں ہے, یہ ایک طرح سے لاء کو بہتر کرنے
2: ہے. یس, اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو اس میں جو یونیک چیز ہے جو آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ یہ صرف تھیئٹر پلیئرس کی حد تک نہیں ہوتا ہے, پورے کا پورا آڈینس انوالو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب پروپوزلس بن رہی ہوتی ہیں, ڈسکشنس ہوتی ہیں, تو آڈینس دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا ڈسکشن, اور اسی وجہ سے جب پروپوزلس بنتی ہیں تو پھر ہم ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں اپنے آڈینس کو, جیسے کہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, اینڈ دین بائی شو آف ہینڈس دے ڈیسائڈ کہ ہماری ریزولوشن کیا ہے.
1: آئی تھنک دس از اے ریئلی گڈ پریکٹیکل ورک میم.
2: دس از اور پھر وہی جو ہم وہاں پہ ریزولوشن پاس کرتے ہیں, وہ جو بھی ہمارا جو لیجسلیٹو کسی بھی اسمبلی نیشنل یا پروونشل سے جو بھی ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, ہم ان کو پریزنٹ کرتے ہیں, سو ٹو پٹ اٹ اپ بیفور دا اسمبلی.
1: میم ابھی اسٹوڈنٹس کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اب لاء کی ڈگری 4 years کی ہو چکی ہے, تو میم اس پہ امپلیمنٹیشن اسٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے, یعنی اب جو بھی انڈیویجول لاء میں ایڈمیشن لے گا اس کی ڈگری 4 years کی ہی ہوگی.
2: یہ اس فال 25 سے اٹ ہیز بین امپلیمنٹڈ, اٹ ہیز بین نوٹیفائڈ بائی HEC اینڈ بائی بار کاؤنسل, اور with reference to this notification falls implemented ab 4 saal ka hoga.
1: Ma'am hum dekhte hain kafi zyada cases इवन पाकिस्तान में भी बाहर भी देखते हैं, एक ये लफ्ज बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रूवन अंटिल गिल्टी। मेरे ख्याल से मेरे पास इतना अच्छा मौका नहीं कभी आएगा स्पेसिफिकली ये पूछने के लिए। मैम, इस पे आपका कितना बिलीव है एज अ जज, और क्या ऐसा होना चाहिए प्रूवन अंटिल गिल्टी, इवन इफ वी डोंट हैव स्पेसिफिक प्रूफ लेकिन हमें एक आइडिया हो जाता है कि इफ समवन इज गिल्टी और नॉट, तो क्या ये बात सही है कुछ मायनों में?
2: अच्छा, इसके साथ और भी बहुत मुख्तलिफ तरह के प्रोवर्ब्स हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि द एक्यूज्ड इज द ब्लू आइड गाय ऑफ द कोर्ट, के वो तो एक्यूज्ड है तो उसको क्यों इतना आप हीरो बना रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के भी माइंड में आते हैं, जैसे आपके भी माइंड में आया है बेटे, बिकॉज डिक्लेयरिंग समवन गिल्टी इज अ बिग थिंग। आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर somebody has been caught under the offense of let's say theft, ठीक है, तो आपने किसी को चोर कहना है, यानी जब आपने उसको convict करना है, तो there is a gap between the accused and the convict. तो जब तक उस बंदे के खिलाफ सारा कुछ प्रूव नहीं हो जाता तो आपको नहीं लगता, कॉमन सेंस कहती है कि जब तक उसके खिलाफ जुर्म साबित ना हो जाए उस वक्त तक तो वो आप और मेरे और तमाम इनोसेंट लोगों की तरह ही इनोसेंट है ना। और फिर हम कोशिश यही करेंगे कि हम देखें कि वाकई उसने वो किया है कि नहीं। तो जाहिर है कि जब तक उसने नहीं किया तो उस वक्त तक तो हम नहीं कह सकते ना कि वो गिल्टी है। तो इस वजह से लॉ ने बड़ा मतलब कॉमन सेंस बेस्ड ये बात है कि आप एक बंदे को, आपने जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में और ड्रामों में होता है और इवन हमारी एक्चुअल लाइफ में भी होता है कि बहुत दफा सिर्फ एक किसी के ऊपर चार्ज लग गया है और लोग उसको पॉइंट आउट,
1: सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ,
2: तो यही बात है कि ये आपने बहुत अच्छा जो आपने मुझे फ्रेज दिया है कि उनको सोसाइटी के अंदर उनका सही मुकाम ज़रूरी है कि मिलता रहे, इसलिए जब तक प्रूव नहीं हो जाता कुछ भी उस वक्त तक तो जाहिर है कि वो गिल्टी नहीं है, वो इनोसेंट है। हाँ, जब प्रूव हो जाएगा तो फिर वो कॉन्विक्ट हो जाएगा।
1: अच्छा मैम, थोड़ा सा मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा, आप प्रीवियस हमारी एक्स प्रोरेक्टर भी, फॉर्मर प्रोरेक्टर भी रह चुकी हैं, तो मैम उस हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था?
2: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, दैट वाज ओनली फॉर वन ईयर और दैट वाज एन इंटरिम अरेंजमेंट। तो इंटरिम अरेंजमेंट में बहुत सारा काम तो जाहिर है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज एंड टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज आई ट्राई टू परफॉर्म, और बड़ा अच्छा लगा था अपने ही इदारे को सर्व करना और अपने ही इदारे को उस लेवल के ऊपर सर्व करना, क्योंकि इंसिडेंटली मैंने पढ़ा भी इसी इदारे से है, तो मेरी जो एसोसिएशन है विद द इंस्टीट्यूशन वो थोड़ी और तरह से है, तो आई ओन दिस इंस्टीट्यूशन। सो जब घर का कारोबार आपको एक दफ़ा मिल जाता है, आपके हाथ में आता है, बेशक थोड़ी देर के लिए आता है, तो दैट इज़ अ बिग थिंग फॉर एनीवन।
1: लिसनर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हम मैम से दोबारा सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: 93.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैम, लॉ से रिलेटेड थोड़ा सवाल है। जो सिटीजन्स हमारे सिविलियंस हैं, मैम हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मोस्टली जितने भी सिविलियंस हैं उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, और हम काफ़ी दफ़ा ये भी देखते हैं कि वेरी प्रोलॉन्ग ट्रायल्स भी चल रहे होते हैं। तो मैम इसकी वजह क्या है कि अक्सर लोग, ज़्यादातर लोग अपने राइट्स के बारे में एक तो एजुकेटेड नहीं है, दूसरा ये मैम इसकी क्या वजह कि अक्सर केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं? क्योंकि हम देखते होते हैं, हम इवन कि अपनी फैमिलीज में भी देखते होते हैं कि बहुत अरसे से कुछ केसेस आगे चलते जा रहे हैं, कोई उन पर स्पेसिफिक कोई ऑर्डर नहीं आता।
2: हाँ जी, उसमें दो तीन बातें। एक तो बात हमने पहले की है और एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं उसको दोबारा करूँगी कि लोगों को पता इसलिए नहीं है कि लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। जैसे मैंने आपको कहा है कि ना स्कूल लेवल पे ना कॉलेज लेवल के ऊपर लीगल एजुकेशन कहीं नहीं है, तो जब लीगल एजुकेशन नहीं होगी तो लोगों को अपने राइट्स का कैसे पता चलेगा? क्योंकि सब राइट्स जो हैं आपको जो मिलते हैं और जिनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं थ्रू द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट एंड कोर्ट, वो आपके सारे के सारे लीगल लीगली डिक्लेयर्ड राइट्स हैं। तो वो जब तक आपको बताए नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि जाहिर है कि नोबडी नोज देयर राइट। और मैं आपको बताऊँ इसके साथ जुल्म क्या है। इसके साथ जुल्म ये है कि हमें जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो ये है कि हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर आपको लॉ का नहीं पता तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़ फॉर। ये ज्यादती है कि आप उनको बताते भी नहीं, पढ़ाते भी नहीं, और फिर एक्सपेक्ट भी ये करते हैं कि उनको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके पहले पार्ट का जवाब है। दूसरा जो आपने कहा प्रोलॉन्ग्ड ट्रायल्स हैं, तो यस आई एग्री, ख़ास तौर पे जो सिविल ट्रायल्स हैं, इवन क्रिमिनल भी हमारे पास बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज हैं सिविल और क्रिमिनल ट्रायल्स की, जो कि बहुत प्रोलॉन्ग चलते हैं। दिस इज़ ड्यू टू जो हमारे बहुत पुराने प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि प्रोसीजरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी स्ट्रिंजेंट और इतनी उसके अंदर लूप होल्स निकाल लेते हैं जो कि उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इस वजह से वो बहुत प्रोलॉन्ग होते हैं। इसके साथ मैं एक और चीज़ का आपके साथ जिक्र करूं कि अभी इसी वजह से जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बहुत मतलब एट द हाईएस्ट लेवल दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस मीडिएशन एंड आर्बिट्रेशन थिंग विच आर द ऑल्टरनेटिव्स टू द रेगुलर ट्रायल सिस्टम। बिकॉज रेगुलर ट्रायल सिस्टम, ऑल्दो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो वर्दी नहीं है, वो बिल्कुल वर्थ वाइल हैं और सारा कुछ है, लेकिन अलॉन्ग विद देम कुछ इस तरह के नए मेथड्स आने चाहिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के, जो कि थोड़ा सा क्विक और थोड़ा सा एक्सपेडाइट करें। तो दैट इज़ द रीज़न कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आप मीडिएशन को और आर्बिट्रेशन को, जो कि अल्टरनेटिव्स हैं, और इसके साथ साथ मीडिएशन में भी बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, उन सबको अडॉप्ट करें, जिसको कि हम ADRs कहते हैं, कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स हैं उनको भी आप यूज़ करें, सो दैट के आहिस्ता आहिस्ता जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वो इंट्रोड्यूस कराई जाएं। एंड दिस इज़ वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि ये बहुत बहुत लंबे ट्रायल्स चलते हैं।
1: मैम थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि ये ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं, और ये भी कि हमें इतनी नॉलेज हमें प्रोवाइड की ही नहीं गई, तो हम पर्सनली एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं जिससे हम अपने लीगल राइट्स के बारे में ज़्यादा जान सकें? यानी इफ़ आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, आई हैवन डन LLB और लॉ एनीथिंग, तो मैं अपने राइट्स के बारे में बेहतर जानने के लिए क्या वो चीज़ें कर सकता हूँ जिससे मुझे भी फ़ायदा हो और स्टेट को भी फ़ायदा हो?
2: बेटी, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि हर स्टूडेंट को साथ में लॉ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लॉ तो सिर्फ जो लीगल एजुकेशन है दैट इज़ फॉर द प्रोफेशनल्स, जिन्होंने कि आके प्रोफेशन में जाना। लेकिन आपकी इस बात से मुझे ये बात ज़रूर याद आती है कि इवन नॉन प्रैक्टिसिंग जो लोग हैं उनके लिए भी लीगल डिग्री होनी चाहिए। और ये बात जो आप कह रहे हैं, ये बात मैं एडवोकेट करती रही हूँ और अभी भी करती हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है सीट्स की, वो ठीक है, आप एक जैसे आपने बनाया है कि एक प्रोफेशनल ट्रैक रखते हैं, प्रोफेशनल ट्रैक में आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें, उनका एग्ज़ाम लें, बार का एग्ज़ाम लें, सब कुछ करें, लेकिन ये कि अदरवाइज लीगल एजुकेशन को थोड़ा सा ओपन करें, ओपन फॉर एवरीवन. उसमें बेशक बहुत शॉर्ट कोर्सेज हो जाएं, डिप्लोमास हो जाएं वगैरह, वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जो कि नॉन डिग्री प्रोग्राम्स हैं. फैकल्टी ऑफ लॉ कर सकती है, फैकल्टी ऑफ लॉ ज्वाइन कर सकती है हैंड्स विद अदर फैकल्टीज, ताकि इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि इवन सारे ही डिसिप्लिन में जो आपके रेलेवेंट लॉज हैं ना, जो आपके प्रोफेशनली रेलेवेंट हैं, वो तो आपको पढ़ाए जाते हैं, जैसे मीडिया लॉज हैं, वो आपको पढ़ाए जाते हैं. लेकिन ये है कि मैं आपके सवाल से ये समझी हूँ कि यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज प्रोफेशनल, यू आर टॉकिंग अबाउट योर बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, व्हाट आर माई राइट्स. एंड तो उसके लिए जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, ये कर सकती है ओपन वेरियस प्रोग्राम्स जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के हैं फॉर जनरल पब्लिक, कि वो आएँ और उसको कस्टमाइज किया जा सकता है. और मेरा नहीं ख्याल कि उसमें हमें किसी की अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी, बिकॉज दैट इज़ अ नॉन डिग्री प्रोग्राम. तो इस तरह के प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं. और प्लस जिस तरह की हम काविशें कर रहे हैं, हम अपना जो क्लिनिक करते हैं लॉ क्लिनिक, उसका भी जिक्र आ गया है बीच में, तो उसमें हम वेरियस जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं वो करते हैं, जैसे वेरियस जो हमारे स्पेशलाइज्ड डेज होते हैं, हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें फिर हम बिल्कुल छोटे छोटे बड़ी आसान जुबान में बना के पैम्फलेट्स जैसे वो तकसीम करते हैं, सो दैट पीपल बी नोइंग के राइट्स क्या हैं. जैसे हमने जो अभी तक किया है उसमें ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे जो फैमिली लॉज हैं वो तो इमीडिएटली हम सबके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस हैं वो करते हैं, जिसमें कि हम फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी, सबको इनवाइट करते हैं. ओपन इनविटेशन होता है कि उनको जो ये मेजर एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका निकाह नामा कैसे फिल होगा, उसको कैसे पढ़ना है, उसको कैसे फिल करना है, डावर कैसे फिक्स होता है, किस तरह करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़ करनी चाहिए, तो इस तरह की छोटी ट्रेनिंग्स हम करते रहते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ की तरफ से. लेकिन आपका अभी भी जो

बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बरसगीर पाको हिंद में दीन इस्लाम के फैलाने में जो किरदार औलिया कराम ने अंजाम दिया वो नाकाबिले फरामोश है। इन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, जो कि 1103 हिजरी 1291 को पांडू के जिला कसूर के एक सैयद घराने में पैदा हुए। इनके वालिद हजरत सखी मोहम्मद दरवेश कूच गिलानिया से तरके वतन करके पांडू आ गए और यहाँ दरसो तदरीस का सिलसिला शुरू किया। आपका सिलसिला नसब हजरत खास पाक हजरत अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। हजरत सैयद अब्दुल मारूफ बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह मर्द हकानी की इब्तदाई तालीम और तरबियत आपके वालिद माजिद हजरत सैयद शाह मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साया हुई। बाद अज़ां आला तालीम के लिए अपने वक्त के इल्मी मरकज कसूर तशरीफ ले गए और मुर्शद कामिल हजरत शाह अनायत कादरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत होकर रूहानी तालीम हासिल की। आप वहदतुल वजूद की मंजिलों को जानते थे, इसलिए हर शेख को मज़र खुदा जानते थे, मुर्शद के लिए इंसान का दर्जा रखते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम अशार और काफियों के जरिए दीन मतीन की खिदमत की और पूरी जिंदगी तबलीग हक में गुजार दी।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांस

0: सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 90.

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: आप सुन रहे हैं हमारी आवाज़, हमारी पहचान FM 92.6.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

किसी भी ऐसी कॉल या SMS का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या मानी मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। PTA को शिकायत दर्ज करवाने के लिए PTA की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या PTA CMS मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। WhatsApp पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में WhatsApp को रिपोर्ट करें।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
0: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं एफएम 92.6। मैं हूं मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ। और हम ब्रेक पे जाने से पहले अपने खास मेहमान सर कामरान बट से बहुत मजे की गुफ्तगू कर रहे थे, और आप बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने लिटरेचर साइंसेज से आर्ट्स में शिफ्ट होकर लिटरेचर पढ़ा हुआ था, और फिर सोशियोलॉजी और इन सब की हेल्प से उन्होंने फिल्म मेकिंग को एक नए एंगल से देखना स्टार्ट किया और सोशल इशूज को हाईलाइट किया। सर, मैं इसी से आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो अब हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे हमारी अब नई डिग्री एक स्टार्ट हुई है फिल्म टीवी एंड डिजिटल एज, तो उसमें जो स्टूडेंट्स आते हैं जब स्पेशलाइजेशन कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना जरूरी है कि उनको लिटरेचर की नो हाउ हो, उनको सोशल इश्यूज का आइडिया हो, उन्होंने सोशियोलॉजी को अच्छे से देखा हो? क्या इसके बगैर भी फिल्म मेकिंग की जा सकती है, या इसकी ग्रिप के साथ अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे एज अ एक पूरे प्रॉपर पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को लेके आते हैं?
2: देखिए, वी टॉक अबाउट फिल्म मेकिंग, तो इसमें जितने फिलोसोफर्स और जितने फिल्म मेकर्स के हवाले से अगर हम देखें, तो उनमें से बहुत से लोगों का ये कहना है कि इट्स अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। आप रियलिटी में जो कुछ देख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। वो ठीक है, कुछ आप बियॉन्ड रियलिटी और फैंटेसी की तरफ जाते हैं, लेकिन वो पोर्शन बहुत कम है। ज्यादातर फिल्म मेकिंग इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी। तो इफ इट इज अ रिप्रोडक्शन ऑफ रियलिटी, तो वो रियलिटी को पहले तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको पता होगा कि आपके इर्द गिर्द के लोग कैसा बिहेव करते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली या बहुत छोटे से सर्कल में एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को, तो आपकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। लिहाजा सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन के बाद ये है कि हम बहुत ऑब्जर्व करते हुए भी बहुत कम ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप एक स्टोरी पढ़ लें, तो आप उस स्टोरी में ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलेगी, आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जो कि आपको इंस्पायर भी करेगा और आपको फिर फर्दर सोचने पे मजबूर भी करेगा। तो लिटरेचर करता क्या है? लिटरेचर, अब जितने भी फिल्म स्कूल्स हैं इंटरनेशनल या जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, वहाँ पे लिटरेचर बेस जो है वो लिटरेचर से ही बनाई जाती है। अब देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या हुआ, ये कि टेक्निक बहुत स्ट्रांग हो गई, हमारे पास बहुत स्ट्रांग कैमराज आ गए, एडिटिंग आ गई, कलर ग्रेडिंग की बहुत टेक्निक्स हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे साउंड को रिकॉर्ड करना और साउंड को प्रोड्यूस करना आ गया। लेकिन जो स्टोरी है वो वहीं की वहीं खड़ी है, कि स्टोरी क्योंकि उस तरह से सिखाई नहीं जा सकती, वो आपके अंदर से आपकी ऑब्जर्वेशन से, वो ठीक है लिखने का क्राफ्ट आपको कोई सिखा देगा, हाँ आप एक्सपोज हो बहुत सी स्टोरी से तो आपका क्राफ्ट बेहतर होता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बेस खड़ी है कॉन्टेंट की या कहानी की, वो आपको लिटरेचर से मिल रही है। मसलन अगर आप देख लें इंटरनेशनल जितने, आप क्रिस्टोफर नॉलन को देख लें, मॉडर्न फिल्म मेकर है, या हम अल्फ्रेड हिचकॉक को देख लें, वो 60s में उसके साइको इज अ वेरी फेमस फिल्म ऑफ अल्फ्रेड हिचकॉक। तो ये सारे वो लोग थे जो ऑटियस थे। ऑटियस वो लोग हैं जो अपना स्क्रिप्ट भी खुद देख, कहानी का सिलेक्शन, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में अपना पूरा इन्वॉल्व होना, और यानी उसका प्रोसेस में खुद से इन्वॉल्व होते हैं, किस नॉवल पे फिल्म करनी है और क्यों करनी है, कौन सी कहानी ऐसी है अगर उन्हें लिटरेचर से उठाना है तो उस पे फिल्म बन सकती है, कौन सी ऐसी कहानी है जिसको उन्होंने चेंज करना है, बेसिक आइडिया वही लेना है फिर उसको चेंज करना है। सो लिटरेचर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। मतलब मुझे आप सब कॉन्टिनेंट में नाम लें तो सत्यजीत रे का नाम आता है। अब सत्यजीत रे वो हैं जो खुद शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, उनकी एक फिल्म हमेशा से मैं रिकमेंड भी करता हूँ, शॉर्ट फिल्म है अनुकुल, अनुकुल रोबोट्स पे है कि किस तरह से रोबोट, और वो उन्होंने 70s में लिखी थी और अब उसको डायरेक्ट किया है कुछ नए यानी फिल्म मेकर्स ने। तो एक राइटर आने वाले दौर के लिए भी उस तरह से उसको लिख रहा होता है, और बड़ा राइटर होता भी वही है कि जिसकी कहानी कभी भी टाइम बाउंडेड नहीं होती। मंटो को आप देख लें, मंटो ने कब कहानियां लिखी वो आज की सोसाइटी पे भी, तो बड़ा राइटर ऐसा एक राइटर होता है जिसका कभी भी जो लाइन है मरती नहीं है, उसको हम इस तरह से बोला करते थे। सो लिटरेचर इसलिए आपको सोचने पर मजबूर करता है, बहुत से किरदारों से मिलवाता है खुद, किस तरह से कहानी ने चलना है और किस तरह से आपने अपने व्यूअर को हुक करना है, क्योंकि हुक करना व्यूअर को काम है आपका, वो चाहे आप स्क्रीन पे कर रहे हैं चाहे आप स्क्रिप्ट पे कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे जाने से पहले अगर कहानी बहुत स्ट्रांग होगी तभी उसमें पॉसिबल है कि वो आप फिर हुक कर सकेंगे। तो इसलिए लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को, हम लोगों ने भी जो डिग्री भी स्टार्ट की उसमें शॉर्ट स्टोरी की पूरी एक सब्जेक्ट रखा हुआ है, वो सिर्फ इसीलिए कि पहले कहानी पढ़ें देखें और फिर स्क्रिप्ट की तरफ जाएं। स्क्रिप्ट राइटिंग है वो टेक्निक है, वो आपको सॉफ्टवेयर भी हेल्प कर रहे होते हैं, वो फेड इन भी आप कर सकते हैं, सेंटेक्स भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइडिया है उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, वो आपको खुद सोचना है। चैट जीपीटी को आप देते हैं, वो आपको आइडियाज दे रहा होता है, लेकिन वो ऐसे आइडियाज होते हैं जो फिर वो बहुत सौ को दे रहा होता है। तो इसलिए मसला ये है कि आपको जो बेसिक आइडिया है वो आप सोसाइटी से एक्सप्लोर करें, उसमें जाके ऑब्जर्व करें, कैरेक्टर रीड करें, एक कैरेक्टर को रीड करें और फिर देखें कि इस ये कहाँ से आया और इसने कहाँ जाना है, वहीं से कहानी बनना शुरू हो जाएगी।
1: सर जैसे अभी आप चैट जीपीटी की बात कर रहे थे तो इसी से आगे सवाल को मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चैट जीपीटी और डिफरेंट एआई टूल्स जो हैं इनकी वजह से फिल्म मेकिंग में बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प ले रहे हैं इनसे। मैं देखती हूँ कि हमारे पास भी जो प्रोजेक्ट्स बच्चे लेकर आते हैं वो नॉर्मली जो क्लास प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कर रहे होते हैं। सो आपको नहीं लगता कि एज ए फिल्म मेकर और एज ए टीचर ये बहुत चैलेंजिंग हो गया उनको जज करना या उनको बताना कि चैट जीपीटी के अलावा या डिफरेंट एआई टूल्स के अलावा वो किस तरह सोच सकते हैं और अपनी सोच के प्रोसेस में सोशल इश्यूज को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं?
2: अच्छा मैम, एक तो ये है कि वो कैसे पता करना कि वो यूज कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि हम खुद अगर टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड रहेंगे टीचर्स तो हमें पता तो चल जाए, जैसे आपको पता चल गया बिकॉज यू आर कनेक्टेड, सिंस आई एम ऑल्सो यूजिंग द टूल्स, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या है और कैसे नहीं है। और ये टेक्नोलॉजीज ये आती रहेंगी, जब कैलकुलेटर आया था तो तब भी बड़ी लोगों ने बहस की थी कि कैलकुलेटर जो है हमारी बेसिक कैलकुलेशन को ख़त्म कर देगा और हम हर वक्त कहीं पे भी जाएंगे तो साथ कैलकुलेटर लेके जाएंगे कि अगर 2+5 है तो कितने बने, तो वो नई टेक्नोलॉजी पे ये बहस होती है। ये है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है। अब मसला ये है कि आप प्रॉम्प्ट देते हैं, चैट जीपीटी आपको आंसर कर देता है, अब उसे आप पढ़ ही नहीं रहे और कॉपी पेस्ट करके टीचर को आपने सबमिट करवा दिया, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। आप हेल्प लें, आप डिपेंड ना हो जाएं पूरे के पूरे, आप कहानी का आइडिया लें, ठीक है, लेकिन वो आइडिया कितना आपकी सोसाइटी पे कनेक्टेड है और कितना आप खुद इंस्पायर हो रहे हैं उससे और कितने उसमें विजुअल एलिमेंट हैं, ये कुछ डिसीजंस अभी भी ह्यूमन के हाथ में ही रहेंगे। और फिर ये है कि वो आपको लाइट के प्लान्स भी बना, फ्लोर प्लान बना के देता है चैट जीपीटी, लेकिन उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं, वो 100% उस तरह से नहीं हो रहा होता। सेम इज़ द केस, उसमें कहानी के हवाले से भी लिमिटेशन होती है। मेरा मतलब है कि वो कल्चरल जो लिमिट्स हैं वो समटाइम्स उसको समझ नहीं आते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से ही आप इंडियन फिल्म में देखें तो वो सारे पाकिस्तानी अगर उन्होंने दिखाने तो अस्सलाम वालेकुम कह रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो शेरवानियां पहन के जा रहे होते हैं, ईद दिखाते हैं तो झंडियां लगी होती हैं। अब ये एरर चैट जीपीटी भी करता है इस किस्म के, तो आपको इन एरर्स को फिल्म मेकिंग में कंट्रोल करके रखना है। हाँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरा मतलब है अगर आप फोटोशॉप में एआई को यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपल आप लिख देते हैं कि मुझे ये बैकग्राउंड चाहिए और वो कर देता है, लेकिन आपने कौन सा बैकग्राउंड करवाना है वो अगेन आपका जो ऑब्जर्वेशन, आपकी अपनी ट्रेनिंग, आपकी अपनी लर्निंग उस पे आएगा। तो हेल्प जरूर है, बहुत अच्छी हेल्प है, होनी चाहिए, लेकिन डिसीजन मेकिंग की दफा आपको क्रिटिकली उसको देखना है।
1: और सर जैसे आपने अपने करियर का आगाज किया उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी और आपके बच्चों के पास हर तरह से एडवांसमेंट भी है, तो क्या आपको एक डिफरेंस नजर आता है? आपने लिटरेचर भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा, और अब के बच्चे जो होते हैं उनको बस होता है कि ये बस एक आइडिया और इसको हमने एक शक्ल देनी है और ये बेस्ट होगा, तो आप उन बच्चों को किस तरह से एडवाइस करेंगे कि जब फिल्म मेकिंग में आते हैं और स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करते हैं तो अपने आप को किस तरह से फुली तौर पे प्रिपेयर करें कि हाँ ये चीज ऐसे और हमने इसको यहाँ से लेके चलना है और इसी तरह से स्टार्ट करना है।
2: देखिए, आर्ट फॉर्म है ना फिल्म भी, और उसमें आर्ट फॉर्म क्या होती है जिसमें आपका अपना एक्सप्रेशन नजर आता है, तो एक तो ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये बात कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो एडिटिंग सिस्टम इतने स्लो थे, मेरे यहाँ हम लोग एक इफेक्ट लगाते थे, एक डिजॉल्व लगाते थे, फिर वेट करते थे कि डिजॉल्व जो है वो लग जाए, तो टाइम जो है उस हवाले से बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गए अब और क्वालिटी वाइज भी हो गए। हम जो है वो टेप्स वाले कैमरा से करियर स्टार्ट किया, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई डिजिटल में, कार्ड्स आना शुरू हुए, तो वो टाइम वाइज मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छा मैनेज हो सकता है। लेकिन जहां तक ये चीज है कि बच्चे किस तरह से उसको यानी बहुत जल्दी करते हैं, इसमें हमेशा से आप कुछ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन करें मरियम अपने आप से, अपने बारे में क्रिटिकल हो, यही मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, अपना कॉम्पिटिशन अपने साथ रखें। जितने ज़्यादा मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट्स जब लाते हैं अपना कोई भी आइडिया लाते हैं तो मैं उनसे क्वेश्चंस किया जाता हूँ कि यार इस बारे में सोचा, ये करेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ये करेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, इस करेक्टर के पास ये करने के लिए था तो इसने क्यों नहीं किया, इसकी कोई जस्टिफिकेशन, सीड्स आपने अपनी कहानी में कहीं ऐसे डाले हुए हैं जो आगे जाके पौधे और ट्री बन रहे हैं, रीजंस बन रहे हैं, तो वो सारी की सारी जो है वो उस तरह से करते हैं। तो क्वेश्चन करना है अपने आप से और अपने बारे में क्रिटिकल होना है। जितने ज़्यादा आप क्रिटिकली अपने प्रोजेक्ट को देखेंगे, जितना खुद से क्वेश्चन करेंगे, उतने ही ज़्यादा फिर उसमें चीज़ें इंप्रूव हो रही होंगी।
1: ठीक है, हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फैकल्टी, मैं हूँ मरियम इरशाद, लेक्चर फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन।

0: मोबाइल डिवाइस की पीटीए से तस्दीक के मुतालिक जानने के लिए खरीदते वक्त सबसे पहले इसका 15 हिस्सों का IMEI नंबर *#06# डायल करके मालूम करें और फिर IMEI नंबर 8484 पर SMS करें या वेबसाइट से चेक कर लें कि ये डिवाइस पीटीए से तस्दीक शुदा है। PTA
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: यही है मेरी पहली आशिकी।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

सोनिया मस्त रुत बसंती अंदर माही जलवा आण विखाया बुलबुल नहर हवावा फुल भी हो गए मस्त रोज अवल में जाम जे पीता वादत मस्ती वाला बूहे कंढा शाम सवेरे मैनू दिस दे मस्त ओ ना डरदा दोजक बोलो ना लालच जन्नत का रखे

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हों मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हों मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए।
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6